तुम ता थाव ले तो उन्छल हाँ सांचे आरे जिरे सो छे आ फामान देएं आ खो हो नो तो डा लिग्यां जुआ वो ने ला बन छे आ गिव से लोन की नां सो छे आ हाँ सो बोई ले लो आई ये तुम आयो वो जीवा उठी ने नां गुण इन बान या मेरे नी से का जिमना पिंग गो火干什么玩剑干什么玩具哈金给你们不来老说完全不够啊抱怨我乱出门了嘛等给找好来了哎呀三千也不忘啊大中啊看你苦苦又给我给我就够不忙要好来也都来了当我乱看你朋友铁嘎我来见给你们不来打工英雄被人是中王啊没来你是个都用气啊我乱做到前台的西宅找没你啊哎呀三千里一样混动的中国跟车间才才没了我的去谁都有命脉恩给我恩都给他看呢哎呀东大心里说你谈就不怕给他我大来看都要讨论的空啊这里东大的没拍过大门来在于这样的感觉英语工作的当然在于能跟我挂进过你哎呦钱谈不能去爸爸爸心里说俺五天里的写到一句胡乱闹搞搞到现在不要无论单独给我生哦对哦单论我都没有俺来漫步公里其他东西修来轻不速度的运务可以我能爱逛过一切多地跟到他的温度还混修性好哎呀现在不可啊因为哥只是老一点的鬼路面片面干不应该呀出门人嘛老人三户的没人说啊女性一生这把去被人呀没留的呀天被人不一定高没人我们去晒的人哪里二毛呢电脑关系是没实在不可啊提问给你跟外家都有老师对我应该无比呀好了好了好了好了好了都要当中啊拽过给我送去修来帮你听东大老母啊会好的也都有谈钱搞个妹妹外国给我爹都给我到我人都出门了要再过到你们钱我老婆可能听你搞个人东大老母三千装哎天当啊会害的也都有天天啊但搞不明白过的地方问他呀英雄的英雄没啊搞不明白的对啊拽把门的女车太生说这样好的温柔顿修啦外国就说爹今天为求你搬出牛哎是安装的有多快到啊当然担保安住担保安住问他呀问他呀问他呀苦人说收一收一多靠客家但做量安装啊前一三年他苦人活了那搞革命说一说的偏在起的没几乎开个运行那时候开行去东大丁上学没人过的技术现在给他考虑他来动车的而没偏在起的来考虑现在说最佳混到老百姓说那台车会开的不明最了定义亲家不白定义那是啊我又说完了老高空的名人给那个大人对亲家亲家哎呀多么哟我大爷嘛给我说呀给我生后谁是高度那样生后就是生后不哟出门了也是北京的哪里公主啊不哟自动说一句话应该要扣落个哎这忙爹我爹应我哪个能准备花爹我爹哪个忙应我君啊到明我也来忙应我君啊被哪也没样你就你看见我爹送我女被美千秋心一进迎接欢天喜地闭眼宽大勾去了生锈跌倒跟那个有的跳蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦这边多加的妖怪抱着我打得起你啊忙着怕了但没有事抱着细细的好弄弄啊但是我不买不生我了只有生物论的就是为黑生物过的谁是高人哪用啊东大做论据都没人家我多什么样啊